बच्चे के रोने की कोई भाषा कोई मजहब नहीं होता है। आधार घड़ते हो खुद ही और फिर चल निकलते हो अभिमान और नफरत करने के लिए। मालिक ने कहां पर बनाए हैं कोई चिन्ह कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਤੁਮ ਸੁਣ ਰਹੇ FM 90.0 ਮੇਗਾਹਰਟਜ਼ ਪਾ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ ਅਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਥਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਖੀ ਨੇਹਾ ਦਾਕੜ, ਔਰ ਥਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰ ਹੂੰ ਆਜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਮਾ। ਮਾਰਾ ਆਜ ਕਾ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਮਾ ਆਓ ਗਾਉ ਚਲੇ। ਤੋ ਆਜ ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇ ਲੰਡਾ ਗਾਉ ਮਾ। ਤੋ ਗਾਉ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਸਤਾ ਅਮ ਬਾਤ ਕਰਾਏ ਗਾਉ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।
1: ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪ।
0: ਤੋ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਆਪ ਸਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿਓ।
1: ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਗਾਉਂ ਲੰਡਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।
0: ਤੋ ਆਪ ਇਸ ਗਾਉਂ ਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ?
1: ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਵਰਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥਾ ਜੀ। ਤੋ ਉਸਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਾ ਗਾਉਂ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਜੀ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਕਾਰਯਕਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ।
0: ਤੋ ਆਪਨੇ ਗਾਉਂ ਵਾਸਤਾ ਕਿਤਨੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ?
1: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਭੀ ਤੋ ਗਾਉਂ ਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਥਾ। ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਅਬ ਤੱਕ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਥਾ ਹਮਾਰਾ, ਵੀ ਇਹੀ ਗਾਉਂ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਗਲੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਤਾ ਥਾ। ਤੋ ਮਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਾਰੇ ਕਾਰਯਕਾਲ ਕੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕੀਏ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਹੀ ਮਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਯ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਹਮ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲ ਸੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਥਾ ਨਾ, ਵੀ ਹਮ ਅਗਲੇ ਇਸ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸਕੇ ਅੱਗੇ ਹਮ ਅੱਗੇ ਜੈਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਵਿਆਮਸ਼ਾਲਾ ਔਰ ਖੇਲ ਕਾ ਮੈਦਾਨ, ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਸਮੇ ਹਮ ਅੱਗੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲਤਾ ਹੋਗਾ ਮੇਰਾ।
0: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸੋਚ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਆਪਕੀ, ਯੁਵਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕੀ। ਤੋ ਯੋ ਗਾਉਂ ਕਿਤਨੇ ਏਕੜ ਮਾ ਫੈਲਿਆ ਰਾ, ਮਤਲਬ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਵਿਵਸਾਇ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ?
1: ਯਹਾਂ ਵਿਵਸਾਇ ਤੋ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਗਏ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਸਭ ਸੇ ਅੱਛਾ ਮੇਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ।
0: ਤੋ ਯਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਏਕੜ ਮਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ?
1: 1600 ਕੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਕਾ ਰਕਬਾ ਤੋ 1600 ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਕੀ 6000 ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟ 2100 ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਖੇਤਰਫਲ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਕਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ।
0: ਠੀਕ ਬਾਤ।
1: ਇਹ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਮੇਂ ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸਮੇ ਵੈਸੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਆਬਾਦੀ ਮੇਂ ਏਕੜ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਇਹ ਇਸਮੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰਫਲ ਆਤਾ ਜੀ।
0: ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਗਾਉਂ ਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੋ ਖੇਤੀ ਮਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਵਾਂ ਯਹਾਂ ਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ?
1: ਉਪਜਾਊ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਫਸਲ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਨ ਖੇਤੀ ਹਮਾਰੀ ਦਾਨ, ਗੇਹੂੰ, ਗੰਨਾ, ਆਲੂ, ਸਰਸੋਂ, ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਜੀ।
0: ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, ਤੋ ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ?
1: ਮੇਰੇ ਕੋ 75% ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। 100% 75% ਸਹਿਯੋਗ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਰਜਨ ਸੇ, ਮਤਲਬ 50-50 ਕੇ ਮਾਰਜਨ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।
0: ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਗਾਉਂ ਸਾਹਿਬਾਦ ਕੇ ਪਾਸ ਆ, ਅਰੰਬਾਲੇ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸ ਆ, ਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਕੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਾ ਗੋਵਾਂ, ਔਰ ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ?
1: ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ ਅੰਬਾਲੇ ਮੇਂ ਨਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਮੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਮਾਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਹਮ ਸਾਹਿਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਂ ਵੇਚਤੇ ਹੈ ਜੀ। DSP ਹਮਾਰਾ ਬਰਾੜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹਮਾਰੀ ਸਾਹਾ ਹੈ ਜੀ, SDM ਹਮਾਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਮ ਇਸੀ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਮ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਹਮ ਰੋਡਵੇਜ ਬਸਾ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਯਕਾਲ ਮੇਂ, ਨਹੀਂ ਰੋਡਵੇਜ ਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਹਮਾਰੇ ਗਾਉਂ।
0: ਤੋ ਜੈਸੇ ਗਾਉਂ ਮਾ ਬੱਚੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਸਕੂਲ ਕੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੈਣ ਜਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਾਦ ਜਹਾਂ?
1: ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹਿਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ।
0: ਤੋ ਇਸ ਲੰਡਾ ਗਾਉਂ ਕੀ ਸਭ ਤੇ ਖਾਸ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ?
1: ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੈਸੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਮੈਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸੀ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਗਾਉਂ ਮੇਂ। ਸਭ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਤੇ ਦਵੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਕੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ।
0: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆ ਬਾਤ। तो आप नू क्या उम्मीद है भी आने वाले टाइम में हमारा गांव और ज्यादा प्रसिद्ध किस तरह होगा, और आने वाले टाइम में और क्या चेंज करेंगे आप गांव में?
1: ये तो कोशिश है जी, कोशिश करेंगे हम जितना भी हमारे से होगा। 4 साल का कार्यकाल है ये हमारा, हम तो ये चाहते हैं भी हम ऐसा करें गांव को भी, दूसरे गांव के हमारे गांव को देखने आए भी, वहां ये काम होया जी हम भी करवाए ये।
0: तो मैं आपसे यूं पूछना चाहूं भी, जिस तरह पहला टाइम में तो बुजुर्ग होए कराते गोमा सरपंच, तो आज के टाइम में देखा जा ज्यादा युवा सरपंच बन रहे, तो इस चीज से क्या फायदा है और क्या नुकसान है?
1: ये तो चलो गवर्नमेंट ने कुछ एक तो क्वालिफिकेशन के लगाए जी, उससे फर्क पड़ा है। मान ले जो बुजुर्ग थे वो अनपढ़ थे या किसी की टेंथ नहीं थी, तो इसका बहुत फर्क है। मेरे ब्लॉक में 62 पंचायतें हैं जी, 62 पंचायतों में से 55 युवा ही है जी, मतलब 7 लोग हैं जो शायद 50 एज प्लस हैं जी, नहीं सब 55 युवा ही हैं जी सारे। और बड़ा अच्छा है जी, ये सारे तालमेल से चलते हैं, सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी इसका।
0: तो जिस तरह पहला बुजुर्ग फैसला लेकर थे तो सारी पंचायत नु वही मानना पड़े करा था, तो आप युवा सरपंच है, आज के टाइम में जो युवा सरपंच फैसला ले रहा तो वही पंचायत मान रही है सारी?
1: ये बिल्कुल वही है जी, जो पंचायत की पावर पहले थी वही पावर अब है जी, इसमें कोई वो नहीं है जी, कोई बदलाव नहीं है, कोई वो नहीं है। लोग मतलब इस पद को इज्जत देते हैं जी, मान सम्मान रखते हैं सबका, जो भी फैसला पंचायत में होता है वो मान्य होता है जी।
0: तो लंडा गांव में जिस तरह कोई बात हो जा, गोमा हो जा, लड़ाई झगड़ा, तो गांव वाले आपके पास आवा पहला या फिर आपनु बिना पूछे कहीं और अपनी रिपोर्ट लिखवावा?
1: नहीं ऐसा है, तकरीबन गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है जी 112 नंबर, वो हमारे से पहले पहुंच जाती है जी, नहीं उसके बाद थोड़ा वो बीच बचाव करके जी फिर मामला पंचायत के पास आता है जी। नहीं ऐसे ये नहीं है अभी कहीं डीसी पे या एसपी पे या ये मैटर नहीं है, वो मैं पहले पंचायत के पास ही आता है, सिर्फ 112 पे कॉल सबसे पहले जाती है जी।
0: तो बहुत बढ़िया बात। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँ भी, जिस तरह सरकार कोई योजना चलावा, जैसे आपने बताया 112 नंबर, तो उस योजना का गांव में जागरूकता किस तरह फैलाई जा?
1: जागरूकता तो अब जो योजना सरकार दे रही है जी, ये ऑनलाइन है अब तकरीबन सारी, वैसे कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं होती। तो योजना सीएससी सेंटर है मेरे गांव में, 2-3 सीएससी सेंटर हैं, वहाँ से तकरीबन सबको पता चल जाता है, ऑनलाइन सब अपने मोबाइल से जुड़े हुए हैं जी। अनाउंसमेंट गुरुद्वारे में ना, वैसे कोई जो हमारे BDPO ऑफिस के हिसाब से आती है कोई योजना, तो हम अनाउंसमेंट करवाते हैं, मनियादी जो चौकीदार होता है मनियादी कर देता है जी।
0: बहुत बढ़िया बात। तो जिस तरह आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना, ऑनलाइन सारे काम होंगे, तो गोमा कोई ऑनलाइन ग्रुप भी बन रहा है जिसमें सारे गांव के जुड़ रहे हो, युवा बच्चे जुड़ रहे हो?
1: ये तो बहुत हैं जी ग्रुप, किसान किसान ग्रुप अलग है जी, ग्राम पंचायत ग्रुप अलग है जी, और मतलब ग्रुप ये तो काफी ग्रुप हैं जिसमें मान ले एक मैसेज डालो तकरीबन सारे गांव एकदम फैल जाता है जी।
0: बहुत ही बढ़िया बात। तो मैं आपसे यूं पूछना चाहूँ, जिस तरह आपने अपनी थोड़ी समस्या बताई भी, शाहबाद भी पास पड़ा, अंबाड़ा भी पास पड़ा, डिस्ट्रिक्ट और उसका थोड़ा वो हो रहा इशू, तो आप इसमें सरकार ते, तो गांव के मुखिया होने के नाते आप सरकार ते क्या आवेदन करना चाहेंगे?
1: सरकार से हम तो यही चाहते हैं भी, ये हमारी छोटी प्रॉब्लम नहीं है जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम इस प्रॉब्लम को हम कहीं मान ले बोल भी नहीं सकते, ऐसी प्रॉब्लम है जी। क्योंकि हमारा जो सारा जो निवेश है, मतलब हमारा शाहबाद शहर है, हम 4-5 किलोमीटर है जी हमारा, तो हम मतलब कुछ भी खरीदना हो या बेचना हो तो शाहबाद ही जरे जी, सिर्फ हम अम्बाड़ा शहर तब जाते हैं जब हमारा सरकारी काम होता है, कोर्ट में तारीख लगती है या DSDM साहब से काम है, तब अम्बाड़ा जाना पड़ता है जी, नहीं प्रॉपर हमारा काम शाहबाद ही होता है जी। सरकार से निवेदन यह भी है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दो जी, हमें कुरुक्षेत्र में ले लो, अगर कुरुक्षेत्र में नहीं लेना चाहते तो हमारे को प्रॉपर सुविधा दी जाए जी, ये नहीं है ये ना, वो भी DSP हमारा बराड़े में है, BDPO हमारा साहे में है, और SDM हमारा अम्बाड़ा कैंट में है, और कोर्ट हमारा अम्बाड़ा शहर में है। अगर एक जगह जैसे हमारा शाहबाद है जी, कोर्ट भी यही है, SDM भी यही है, BDPO यही है जी, DSP यही है, यहाँ सारा प्रशासन शाहबाद में है, अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाए हमारा ये गांव स्वर्ग बन जाता है जी।
0: तो आप युवा सरपंच होने के नाते आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह हमारा युवा आज थोड़ा गलत काम में भी जा रहा तो सामाजिक कुरीतियां भी फैल रहे, एक युवा होने के नाते हमारे युवा बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: ऐसा जी, ये तो संदेश हम यही देते हैं भी नशे से तो दूर रहना तो बहुत अच्छी बात है, नशा तो जिंदगी नरक बना देता है। और हम ये बीच बीच में जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है या गांव में प्रोग्राम होता है, हम वैसे भी करते हैं, मुनियादी वगैरह भी करवाते हैं भी, जैसे भी कोई कहीं कोई नशा होता है तो उसको हम सचेत करते हैं जी भी, वहाँ जैसे कोई माले बच्चे नशा कर रहे हैं तो उनको हम मुनियादी या अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको मैसेज देते हैं भी अगर ऐसे करेंगे तो आपको एक मतलब खिलाफ कार्रवाई भी होगी और आपकी जिंदगी खराब है जी।
0: बहुत बढ़िया सोच है जी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार के साथ जुड़ने के वास्ते।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी मेरे गांव में पधारने के लिए, आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: तो हम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार सफर जिंदगी के स्टेशन से आए, तो आपनु इस रेडियो स्टेशन के बारे में जानकारी है?
1: हाँ थोड़ी जानकारी थी, पर आगे हम अब ऐसा करेंगे आपसे मिले हमको जानकारी है जी, हम गांव के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे भी ये एफएम 90 सुनो और इसमें जो भी स्कीम योजनाएं जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंचे।
0: जो ये रेडियो स्टेशन है इसमें हम गांव के सारे प्रोग्राम करा हरियाणवी में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी गांव की संस्कृति जो हमारे लोग भूल गए, जो पहला के टाइम मोए करा थे, अपने बुजुर्गों से बात करा, 100 साल के बुजुर्गों का भी इंटरव्यू लेवा और अपने गांव में जो भी हुआ गांव की अपनी खेती बाड़ी खान पान ये सारी बातें करा, जो हम रीति रिवाज भूलते जा रहे उनके बारे में भी हम बात करा और लोगों को बतावा। आप रेडियो नु रेडियो पर ही नहीं सुन सकते, सुनो आप इंटरनेट के द्वारा कहीं भी सुन सका, देश में विदेश में कहीं भी, बस आपनु अपने क्रोम पर जाकर webplayer.radiovitasta.com लिखना और रेडियो वहां से शुरू हो जा।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी सेजल और आज हम पहुंच चुके हैं गांव, आज हम पहुंच चुके हैं गांव लंडा में। तो जैसे कि अभी कार्यक्रम आओ गांव चले के अंतर्गत आपने सुनी इस गांव के बारे में खास बातें, तो और भी आपको खास बातें सुनाते हैं, उसके लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं गांव की ही एक सदस्य पूजा जी। तो उनसे हम पूछेंगे कि जब हम आपके गांव में आए तो हमें आपका गांव बहुत ही स्वच्छ देखने को मिला, तो इसमें गांव वालों का कितना सहयोग रहा गांव को स्वच्छ बनाने में और सरपंच जी का कितना सहयोग था इसमें?
3: जो गांव की साफ सफाई है बेसिकली वो जैसे हम कह सकते हैं कि पहले से तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है, ठीक है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि रोल सिर्फ सरपंच का ही है, रोल जो गांव के सभी लोग हैं पढ़ लिख लिए हैं, सफाई का पता चल गया है, अब इतनी सारी जो बीमारियां हैं उनके पीछे यही वाला रीजन मिलता है कि सफाई की कमी की वजह से होती हैं ये। अब भी सब लोग पढ़ लिख लिए हैं, अवेयर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सब अपने आप ही गाँव को साफ रखने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि सरपंच के पास जाते हैं तो वो हमें बोल देते हैं, यहाँ तक कि अगर मैं अपनी पर्सनल एक बात बताऊं कि हम जो डेली हमारा जो घर का कचरा निकलता है हमें उसको फेंकने के लिए हम उसको कहाँ थ्रो करें, उसके लिए कोई जगह नहीं होती पर्टिकुलर। गांव में क्या होता है जहाँ पर भी कहीं कोई खुली जगह है वहां पे फेंक दिया, ठीक है, लेकिन वहां पे पशु हैं, जानवर है, स्मेल आ रही है, वो सब चलता रहता है। तो यहाँ पे एक बार अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने खुद सरपंच की जो वाइफ थी उनसे बात की कि जैसे कि शहरों में कचरा लेने आते हैं तो वो गांव में भी आए, ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि मैम हमने ना यहाँ पे जगह जगह बॉक्सेस रखवाए थे लेकिन उनमें कोई डालता ही नहीं था कचरा, यहाँ पे सब ये सोचते हैं कि भाई नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, जहाँ पे खाली जगह दिखी है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है वहां पे आप फेंक दो उसको। तो धीरे धीरे अब मुझे इतना टाइम हो गया तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं चीजें इम्प्रूव हुई हैं, लोग समझ रहे हैं कि हाँ बीमारियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं गांव को साफ सुथरा रखने के लिए हम सिर्फ सरपंच पे डिपेंड नहीं है या किसी और कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं है, अगर हम खुद साफ रखेंगे तो भाई ऑटोमेटिकली सभी एक दूसरे को देख देख के सभी साफ रखेंगे, तो इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से
2: जी। आपका गांव बहुत ही खूबसूरत लगा हमें देखने में और साथ ही इसको थोड़ा शिक्षा की तरफ भी लेकर जाना चाहूंगी कि जैसे हमने जाना कि आपके गांव में खेल कूद की तरफ बच्चों की ज़्यादा रुचि रहती है, तो आज के समय में गांव में जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा की तरफ क्या उनकी रुचि रही है और क्या खेल कूद की तरफ लड़कियाँ भी उतनी ही एक्टिव हैं?
3: खेल कूद का अगर हम कहें तो जो शाहबाद हमारा जो नियरेस्ट शहर है हॉकी स्टेडियम है वहाँ का, वहाँ पर तो वो स्टेडियम एक पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वहाँ से निकल के गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि वो आसपास के एरिया के ही लोग होते हैं जो वहां पे प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है वो हॉकी स्टेडियम, तो बहुत सारी लड़कियां वहां पे प्रैक्टिस करने जाती हैं। और उससे पहले आपने कहा कि एजुकेशन भी पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एजुकेशन है, चाहे आप इसको ये कह लीजिए कि हम गांव से शहर की तरफ, अगर हम पहले एजुकेशन इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, अब वो फैसिलिटीज उनको मिलने लगी हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर भी जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैं शादी के बाद ही मैंने अपनी एमएड इन एजुकेशन वो मैंने कंप्लीट की है, और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ इन पॉलिटिकल साइंस, तो वो फैसिलिटी कहीं ना कहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं अवेयर है, तो तभी हम वो कर पा रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां यहाँ की मैंने गांव की देखी हैं कि वो हायर एजुकेशन के लिए या अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए फॉरेन तक जा रही हैं। यहाँ से कम 20 से 25 लड़कियां हैं जो पिछले 2 से 3 सालों में फॉरेन के लिए गई हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट ही है उनकी।
2: और बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए बच्चों के लिए क्या सुविधाएं आपके गांव में दी जाती है?
3: गवर्नमेंट स्कूल है जैसे यहाँ पर, एक दो प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो है वहाँ पे आसपास के जितने भी नियरेस्ट जैसे अम्बाला है, शाहबाद है, तो उन मोस्टली स्कूल्स की बसेज यहाँ पे आती हैं। तो अभी वो नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि गांव है तो वो एजुकेशन वहाँ से हम नहीं लेने जा पाएंगे, हैं थोड़ी बहुत हर्डल्स हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन पहले के अगर हम कंपेरिजन करें तो बहुत फैसिलिटीज हैं।
2: और अगर हम स्वास्थ्य को लेकर बात करें, जैसे कि आपने बताया कि गांव में साफ सफाई है जिसकी वजह से बहुत कम ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा गांव में स्वास्थ्य को लेकर क्या जागरूकता फैलाई जाती है और किस प्रकार की सुविधाएं हैं?
3: है यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और जितनी भी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स की है, छोटे बच्चों की है, तो वो सारी यहाँ फैसिलिटीज उनको गांव में ही मिल जाती। मतलब जैसे कि ये जो गांव है हाईवे पर है, हाईवे के नज़दीक है, तो आसपास अम्बाला है और शाहबाद है, आदेश हॉस्पिटल्स है, तो मेडिकल फैसिलिटीज हैं।
2: जैसे सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे बच्चों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, तो गांव में कितने प्रतिशत आपको लगता है कि उसके बारे में जागरूकता है और किस प्रकार से वो जागरूकता आपको लगता है कि फैलाई जा रही है?
3: मेन तो रीजन इसका एजुकेशन है, कि एजुकेशन की वजह से उनको पता है कि हमें क्या क्या हमें अपने बच्चों को चाहे वैक्सीनेशन कराना है, चाहे उसको साफ सफाई से के थ्रू उनको मतलब हेल्थ प्रॉब्लम से बचाना है, तो मेन एजुकेशन है मुझे लगता है।
2: साथ ही एक समय ऐसा था कि जब ये कहा जाता था कि गांव को शहर से पिछड़ा हुआ माना जाता था, और एक समय अब है कि जहां पर गांव में सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी शहर और गांव में कोई फर्क है या अभी दोनों समान स्तर पर आ चुके हैं?
3: नहीं, हम समान स्तर पे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ फैसिलिटीज से ही अगर हम कंपैरिजन करें तब तो मिलेंगे ही, लेकिन जो मेन है वो हमारी सोच पे भी डिपेंड होता है। गांव में बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी यहीं तक ही सीमित हैं। न्यू जनरेशन है वो बाहर निकल रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे अभी भी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी गांव तक ही सीमित हैं। वो रेयरली गांव से बाहर निकले हैं या आसपास तक ही गए हैं, तो वो सोच का डिफरेंस अभी भी है, लेकिन जो नई जनरेशन है वहाँ बहुत इम्प्रूव।
2: तो ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो आप चाहेंगे कि सरकार द्वारा आपके गांव तक पहुंचाई जाएं जो अभी तक नहीं पहुंच पाई है?
3: सबसे पहले तो जैसे हॉस्पिटल हैं, हाँ हॉस्पिटल हैं वो, लेकिन इतनी भी वहाँ पर मतलब बेसिक ही हमें कोई फैसिलिटी मिल पाती है, अदरवाइज हमें शहर की तरफ ही जाना पड़ता है। सेकेंडली है कि जो एजुकेशन है, कि एजुकेशन भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की कमी है वहाँ पर, ठीक है। और मेनली बात है कि जो हेल्थ को लेकर है वो अभी भी कॉन्शियस हैं, लेकिन वो इतने भी कॉन्शियस नहीं है कि वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करें, जिम करें या अच्छी डाइट लें। वो नेचुरल है हमारे एनवायरनमेंट में कि हाँ हम उस चीज़ को सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस इतनी नहीं है, मतलब मुझे लगता है ऐसा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी अपने गांव के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद।
3: थैंक यू, धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर जगदीप जी का, कि इन्होंने हमें अपने गांव में बुलाया और साथ ही अपने गांव को देखने का, जानने का मौका दिया और हमारे श्रोताओं तक अपना ये गांव पहुंचाया। तो मैं चाहूंगी कि ये अपनी ही आवाज़ में बताएं, कि एक सार में बताएं अपने गांव के बारे में, कि इनका गांव किस तरीके से फल फूल रहा है और आगे किस मार्ग पर जाने की कोशिश कर रहा है।
4: धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो रेडियो विदस्ता की टीम का धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे गांव में आई और हमारे गांव की जो विभिन्नता है उसके बारे में जानकारी हासिल की। इसलिए भी ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे गांव के बारे में पूरे अंबाला में या पूरे विश्व में जानकारी जाएगी कि किस प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, किस प्रकार की विभिन्नताएं हमारे यहाँ है। तो एक बार फिर मैं रेडियो विदस्ता 90.0 MHz का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि गाँव, मेरा गांव ये माना जाता है कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट का लगभग सबसे संपन्न गांव है। विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं और इस गांव में इतना अधिक भाईचारा है और पिछले कई सालों से मैं देखता हूँ कि कोई भी यहाँ पे झगड़ा नहीं है, पुलिस केस नहीं है, आपस में बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। समय समय पर हमारे गाँव में गेम्स, समय समय पर यहाँ पे रक्तदान शिविर, समय समय पर दूसरे की मदद करना और दूसरे अन्य प्रकार के आयोजन भी किए जाते हैं। हमारे गांव में लगभग अगस्त में एक मेले का भी आयोजन किया जाता है और ये आप कह सकते हो कि विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग और विभिन्न शिक्षाविद सभी मिलकर बाहर हमारे इस गांव में अब गांव का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन, अपने स्टेट का नाम भी रोशन करते हैं। और हमारा इतना अधिक भाईचारा है कि किसी के दुख में, किसी के सुख में बाहर से हमें कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जो जो बड़ी से बड़ी समस्या है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा है कि समस्याएं बाहर से सरकार से भी मदद हमें नहीं मिलती, चाहे हमारे स्कूल के मामले में हो या हमारे ग्राउंड के मामले में, दूसरे अन्य मामलों में है, गाँव के लोग सभी मिलकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर आप सबकी जो आप यहाँ पे आए हमारे गांव में, हमारे विभिन्न लोगों से बातचीत की, मुलाकात की, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।
2: धन्यवाद सर, रेडियो वितस्ता टीम की ओर से, रेडियो वितस्ता के परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने गांव को पूरे अंबाला तक और विश्व तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज के कार्यक्रम की समाप्ति मैं यहीं पर करना चाहूँगी। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी नेहा धाकड़ का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में हमारा सहयोग दिया और बाखूबी सभी गांव वालों से बातचीत करी। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके गांव में आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट या वॉइस नोट के जरिए हम तक संदेश भेज सकते हैं। हम ज़रूर आपके गाँव में आएंगे और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। हमें आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ यह कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि वक्त हो चला है जाने का। जुड़े रहें 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ, अम्बाला का अपना रेडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: परती ले मर जाने आखिर दे के आन बचाने
1: परती ले मर जाने आखिर दे के आन बचाने
0: अस सजना ले गमखार बने अस दुश्मन ले तलवार बने हमू तोड़ दिए
1: हमू तोड़ दिए बेईमाना दा फिर सोना देश किसाना
0: दारा लो आमन दाजे मेरे गबरू शेर जवाना दा हो मेरा सोना देश
1: हो मेरा सोना

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। हम लेके आए हैं आपके लिए आज के कृषि समाचार।
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: कपास की बिजाई इसी महीने अंत तक पूरी कर लें। दीमक वाले खेत में करें बीज उपचार। खेत में पलेवा के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 3 से 4 बार जुताई अवश्य करें। कपास की बिजाई मई के अंत तक पूरी कर लें। नरमा की उन्नत किस्मों तथा देसी कपास की सिफारिशशुदा किस्में ही बोएं। चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज के अनुसार पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 3 से 4 जुताई करें। बिजाई से पहले खेत में अच्छा पलेवा करें। गीले बत्तर में 2 जुताइयां करके सुहाग लगाएं व खेत में पौधों की सही संख्या के लिए बीज की सही मात्रा प्रयोग में लाएं व बीज का उपचार करके ही बिजाई करें। जिन खेतों में कपास की बिजाई ना करके ज्वार या बाजरे की खेती करें या 2.0 ग्राम बावेस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार अवश्य करें। जिन खेतों में पिछले वर्षों में दीमक का प्रकोप रहा है वहां प्रति किलोग्राम बीज के 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी व 10 मिलीलीटर पानी के घोल से उपचारित करें। ड्रिल मशीन से डालें यूरिया व जिंक सल्फेट। अमेरिकन कपास की बिजाई करते समय हिसार और सिरसा जिलों में जहां जमीन काफी रेतीली है 37 किलोग्राम यूरिया और 75 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ बिजाई के समय ड्रिल करें। यूरिया की शेष आधी मात्रा यानी 37 किलोग्राम बोकी आने पर डालें। सुपर फॉस्फेट हमेशा ड्रिल द्वारा डालनी चाहिए। कपास की देसी किस्मों के लिए फास्फोरस की मात्रा की सिफारिश तभी की जाती है जब मिट्टी परीक्षण में फास्फोरस की कमी हो। नरमा के लिए 8 से 10 किलो और देसी कपास के लिए 5 किलोग्राम बीज डालें। नरमे का रोयो सहित 6 से 8 किलोग्राम व रोयो युक्त 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। देसी कपास में 5 किलोग्राम बीज काफी रहता है। संकर किस्मों का रोये उतरा बीज 1.2 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। बीटी संकर किस्मों का 850 ग्राम बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोएं। बिजाई के दौरान कतार की दूरी 100 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। नरमा की मुख्य किस्में एच 1226, एच 1098, संशोधित संकर किस्में एच 223, एच 287, देसी कपास की एचडी 123, एचडी 324 व एचडी 432 तथा संकर देसी की AAH1 प्रमुख है। बीटी व संकर किस्मों को 67.5 से 60 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों या कतार की दूरी 100 सेंटीमीटर व पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। अन्य किस्मों में दूरी 67.5 सेंटीमीटर व पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। मेड़ों व खालों से खरपतवार नष्ट कर दें। खरपतवार नियंत्रण के बिजाई के तुरंत बाद पेंडीमेथिलीन की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मिलीबग के नियंत्रण के लिए बंजर भूमि पर व खेती के आसपास मेड़ों, खालों और रास्तों आदि पर उगने वाली खरपतवारों जैसे गाजर घास, कंगी बूटी और कपास की पिछली फसल के ठूंठों से आगे वाले पौधों को नष्ट करें।
1: किसान बागवानी फसलों की आधुनिक IPM तकनीक से कीटों से करे सुरक्षा, कम लागत में मिलेगी बम्पर पैदावार। IPM अपनाने से खर्च में आती है कमी और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। किसानों को अक्सर बागवानी फसलों को बचाने के लिए महंगे हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों का सहारा लेना पड़ता है, पर इनके बजाय समेकित कीट प्रबंधन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM अपनाने से रसायनों पर निर्भरता कम होती है, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है व फसल में जहर का अंश नहीं रहता। रसायनों का खर्च बचाने से खेती की लागत कम होती है। IPM कोई एक दावा नहीं बल्कि

0: इसमें विशेष लुअर का प्रयोग होता है जो विशेष गंध छोड़ता है और नर कीटों को आकर्षित करती है और उन्हें जाल में फंसा लेती है। उपयोग: अमरूद, आम, पपीता, चीकू की फसल में फल मक्खी की रोकथाम एवं टमाटर के फल छेदक कीट की रोकथाम में कारगर हैं। कद्दू वर्गीय फसलों जैसे लौकी, तुरई में यह बेहद कारगर है। प्रति एकड़ 8 से 10 ट्रैप लगाएं। दूसरा, स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप यह उड़ने वाले छोटे कीटों को चिपकाकर खत्म करने का सरल तरीका है। यह दो रंगों में आते हैं। पीले ट्रैप, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, एफिड और जैसिड के लिए। विधि: इन्हें मिर्च और टमाटर जैसी फसलों में पौधों की ऊंचाई के बराबर लगाना चाहिए। तीसरा, एलईडी लाइट ट्रैप। कई खतरनाक कीट रात के समय सक्रिय होते हैं। यह उपकरण रोशनी के जरिए उन्हें अपनी ओर खींचता है। किसानों के लिए अनुदान: प्रदेश सरकार एकीकृत बागवानी विकास IHD योजना के तहत किसानों को इन आधुनिक उपकरणों फेरोमोन स्टिकी और LED ट्रैप की खरीद पर 75% तक का भारी अनुदान प्रदान कर रही है।
1: तरबूज की खेती में इस बार प्रति एकड़ 2 लाख तक हो रहा है मुनाफा। प्रति एकड़ 25 से 30 हजार रुपए तक का खर्च। गर्मी में तरबूज की मांग को देखते हुए सुनारिया के किसान जिले सिंह ने पिछले साल खेती शुरू की थी। अब की बार 5 एकड़ भूमि को इसकी खेती के लिए फरवरी माह में तैयार किया। प्रति एकड़ में 7 से 8 टन खाद डाली। 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बिजाई की। प्रति एकड़ 30 हजार रुपए का खर्च आया। अब ये फसल लहलहा गई है। बाजार में तरबूज की भारी मांग होने के कारण हाथों हाथ बिक रहा है। इससे करीब 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की इनकम हुई है। इस फसल में खासियत ये है कि फल आने के दौरान रोग लगने का उतना खतरा नहीं होता, क्योंकि गर्मी में शत्रु कीट उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए मेहनत व लागत कम हो जाती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगत बताते हैं कि लू चलने के समय रोग उत्पन्न करने वाले शत्रु कीट गर्म हवा से नष्ट हो जाते हैं। ये थे आज के कृषि समाचार। उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपको लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, उन्नत रहिए।
0: मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

बहनों भाइयों, 50 के दशक में गायकी की दुनिया में एक खूबसूरत नाम ने जन्म लिया। शानदार जानदार भारतीय गायिका के तौर पर सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज ने फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो लगभग सभी संगीतकारों के चेहरों पे इत्मीनान के साथ साथ खुशी की लहर दौड़ गई।

लता मंगेशकर की आवाज से मिलती जुलती आवाज सुमन कल्याणपुर ने सन 1956 में फिल्म मंगू के नाम से अपने करियर की शुरुआत की। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी सन 1937 को ढाका, अब बांग्लादेश में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने सन 1958 में रामानंद कल्याणपुर से शादी की। आपने अपनी गायकी की शुरुआत कर सन 1960 और सन 1970 के दशक में एक लोकप्रिय गायिका के तौर पे अपने आप को साबित किया।

उनकी आवाज लता मंगेशकर जैसी होने की वजह से कई ऐसे मौके भी आए कि संगीतकारों ने उन्हें लता मंगेशकर के विकल्प के तौर पे उनकी आवाज का इस्तेमाल

एक ऐसा मौका आया था जब सुमन कल्याणपुर ने ए मेरे वतन के लोगों गीत की रिहर्सल की थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान उनसे ये गीत ले लिया गया था, जिसका मलाल सुमन कल्याणपुर को सारी जिंदगी रहा।

सुमन कलालपुर को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोंसले, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम के साथ हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे युग के लोकप्रिय गायकों में से एक माना जाता है।

उन्होंने सन 1960 के दशक में मोहम्मद रफी के साथ 140 से ज्यादा दो गाने गाए। सुमन कल्याणपुर की दो गानों की एक झलक।

जब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था और लता ने रफी के साथ गाने से इनकार किया था, तब मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरनी और लेकर आई हूं पॉडकास्ट विद किरनी का एक नया अंक, जिसका टॉपिक है सोच नहीं रह नहीं। एक ऐसा शो जो नए विचारों, नए नजरियों और नए सपनों की बात करेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हमारी सोच बदल सकता है, जिंदगी देखने का नजरिया। अगर हम अपनी सोच बदल ले तो सफलता की राह भी नई बन सकती है। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ही हालात में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? ये सिर्फ उनकी सोच का फर्क है। कई बार हम किसी हालात को समस्या समझकर उदास हो जाते हैं, जबकि वही हालात किसी दूसरे के लिए एक नया मौका होता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक गिलास आधा भरा है, कोई कहेगा ये तो आधा खाली है और कोई कहेगा ये आधा भरा है। फर्क सिर्फ नजरिए से देखें का है। अगर हम हर छोटी बात को पॉजिटिव नजरिए से देखें तो हमारे जीवन की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है। हर नेगेटिव बात में एक पॉजिटिव एंगल ढूंढने की आदत डालें। अपनी सोच पर कंट्रोल रखना सीखें। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर एनर्जी वेस्ट ना करें। रोज सुबह ग्रेटिट्यूड लिखने की आदत डालें। ये आपकी सोच और मूड दोनों इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों, पहला स्टेप है अपनी सोच का एंगल बदलिए, ताकि जिंदगी का सफर और सुकून भरा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में बदलाव कैसे लाए? नया नजरिया बनाना एक शुरुआत है, लेकिन उस नजरिए को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना सबसे जरूरी है। बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। अपनी डेली रूटीन में एक छोटी सी नई आदत शामिल करें। जैसे अगर आप फिटनेस इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 मिनट वॉक से शुरुआत करें। अपने गोल्स को लिखें और हर रोज एक छोटा स्टेप उस गोल की तरफ उठाएं। नेगेटिविटी से दूर रहने की आदत डालें, बी ए टॉक्सिक लोग या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। उदाहरण के तौर पर एक स्टूडेंट जो कहता है मुझसे मैथ्स नहीं होता, अगर वो अपनी सोच बदल दे और कहे मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करूंगा, तो वही स्टूडेंट मैथ्स का एक्सपर्ट बन सकता है। बस ये स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। दोस्तों, याद रखें, छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी बड़ी सफलता का रास्ता बनाती है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत लोग कहते हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारिए। सीधा खड़ा होना, आई कांटेक्ट बनाना और क्लियर बोलना, ये सब सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। अगर आप हमेशा अपने दिमाग में नेगेटिव बातें सोचेंगे तो कॉन्फिडेंस कभी बढ़ेगा ही नहीं। रोज खुद से कहे मैं कैपेबल हूँ। अपनी छोटी छोटी सफलताएं याद रखें। हर जीत छोटी हो या बड़ी, उसको सेलिब्रेट करें। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े स्पीकर्स भी पहली बार स्टेज पर जाने से पहले नर्वस थे? फर्क सिर्फ ये है, उन्होंने प्रैक्टिस की और अपनी कॉन्फिडेंस को डेवलप किया। तो अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को एक स्किल की तरह ट्रीट करें और उस पर डेली काम करें। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक नया नजरिया जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमने सीखा कि अगर हम हर छोटी चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखें, एक्शन लें और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, तो हम अपनी राह खुद बना सकते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो इस बात को याद रखना, हर दिन एक नई सोच लेकर आइए, नए कदम उठाए और अपनी कहानी खुद लिखे। मैं हूं किरनी और आपसे विदा लेती हूं इस एपिसोड के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए सोच और नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए सोच नहीं रह नहीं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ದೈಚು ಬೊಜಾನ್ 90.0 ರೇಡಿಯೋ ವಿತಸ್ತ ಹಮ್ ಸಫರ್ ಜಿಂದಗಿ ಹೊಂದ್.
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज. तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते. और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया.
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

0: सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों खुशामदीद, मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। इस सफर में आप हमारे साथ शामिल रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा।

लौटने के इंतजार का ये कैसा आलम, हवाओं की तरह आते हो चले जाते हो इस वादे के साथ कि फिर लौट आऊंगी। हमारी सितम जरीफी देखिए, तुम्हारी आहटों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर छूने का तस्वुर ज़हनो दिल से कौंसो दूर। बेशक रुत बदले, मौसम बदले, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की खुमारी हमारी चाहतों को ना बदल सके। बख्श के ख्यालों को रौनक, राहों को कर गए मुनव्वर। मेहरबानी

जाने क्यों इन उदासी भरे लम्हों में एक कसक सी उठती है दिल में कि इन खामोश पुरसकून पर जज्बाती रातों में कोई आता है जरूर और पैरों को छूकर दबे पांव निकलता है यूं ही मुस्कुराकर और मेरी करवटों को महका कर अधूरी मुरादों को पूरा कर इन बुझी शमाओं को रोशनी से भर देता है। जाने क्यों मेरी उम्मीदों को जगा देता है यूं ही

एक ऐसा सच जिसे शायद आज तक कोई न जान सका, और ये भी अपनी जगह सही है, जीवन है पानी का बुलबुला। मुट्ठी में रेत की मानंद जैसा यह जीवन कब फिसल जाए हाथों से हर कोई है बेखबर। जीवन की इस पहेली को न कोई समझा है और न कोई जाना है।

जो रुक गए कदम, तो शायद बहक गए भटक गए, ये रास्ते आखिर जाते कहां है? क्या मुसाफिरों को मंजिल मिल जाती है? बेशक सफर लंबा हो, पर दौराने सफर साथी तो मिल जाना चाहिए, जो कभी पीछे छूट गए थे वो शायद लौट के नहीं आएंगे, शायद लौट के नहीं आएंगे, लेकिन नई परिंदे हमारे साथ उड़ान तो भर सकते हैं।

जब बात चली है तो आज मेरी सितारों से बात हुई, सितारे जो आसमानों में जा बसे हैं, तन्हा तन्हा खामोश वजूद लिए दबी दबी मुस्कुराहटों का जेवर पहने हुए, खुशबू का लिबास मोहब्बतों की चादर ओढ़े, सितारे जो गुप अंधेरों में तैरते हैं बादलों के साथ, रात भर पहरेदारी में मसरूफ आसमानों की निगहबानी में मुंतजर, हर पल हमारी मुलाकातों में शामिल ये सितारे रहते ही

0: लगता है।
1: फिल्मी गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पहलू और गीत का आज का अंक लेकर मैं किरणी फिर से हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सावन के महीने के बारे में।
1: बन्ना रे बागा में झूला डाल्या, बन्ना रे बागा में झूला डाल्या।
0: हिंदुओं के लिए सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इसे भगवान शंकर का महीना भी कहते हैं। मान्यता है सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर निवास करते हैं। उनको खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। सावन का महीना बारिश का भी होता है और मौसम बहुत ही सुहावना और ठंडा रहता है। गर्मी से राहत के लिए लोग घूमने का आनंद लेते हैं और खुशी से झूम उठते हैं।

0: सावन के महीने में बहुत अधिक बारिश होती है।
1: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
0: और ये किसानों के लिए भी प्रिय महीना माना जाता है। हर तरफ हरियाली छा जाती है। किसानों को भी फसल के लिए बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बारिश से धरती मानो स्वर्ग सी लगती है और सुंदर दिखाई देती है।

सावन का महीना खुद में एक विशेषता लिए हुए है। ये प्रकृति को तो सराबोर करता ही है, साथ ही मन को भी भिगो देता है। सावन का ये महीना मनुष्य पशु पक्षी सबके लिए खुशहाल मौसम लेकर आता है। आज शाम जब बरसा सावन भीगा अपना तन मन सारा,

0: ए यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा।

सावन के महीने में महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी पड़ते हैं। उनमें से रक्षाबंधन और हरियाली तीज मुख्य त्योहार है। हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। आप सबके लिए तीज के अवसर पर ये प्यारा सा गीत।

तीज का त्योहार हो और मेहंदी ना हो। मेहंदी के बिना तीज का त्योहार या सावन अधूरा है। तीज के दिन मेहंदी लगाने का भी एक विशेष महत्व है। मेहंदी का इस्तेमाल शरीर की गर्मी दूर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है हरा रंग जो मेहंदी का रंग है कई रोगों के रोकथाम में भी कारगर होता है।

तीज के दिन महिलाएं हरी चूड़ियां हरे रंग का पोशाक पहनकर झूला भी झूलती है, क्योंकि जो हरा रंग है ये प्रकृति का रंग होता है और हरा रंग अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक है। 16 श्रृंगार करके लोग गीत अथवा तीज के गीत गाकर उत्सव भी मनाती हैं, खुशी से झूम उठती हैं और मन मोर नाच उठता है।

सावन महीने में दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार जो है वो रक्षाबंधन का आता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और सुखी जीवन की प्रार्थना करती है।

रक्षाबंधन सबसे सुखद और सार्थक त्योहारों में से एक है। ये भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है।

न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार, चाहत बहन की इतनी कि बस बना रहे प्यार। गम न कोई पास में आए, खुशियां मिले हजार, न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार। इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का समय समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज आमंत्रित हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक संभव आजाद। उनसे बात करेंगे भारत सपोरी।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सपोरी, लेके आया हूं आज एक नया कार्यक्रम जिसका शीर्षक रहेगा इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम उन कलाकारों से बात करते हैं जो कला के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो संगीत हो या कला की कोई भी विधा हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अलग अलग लोगों को स्टूडियो में आमंत्रण देते हैं और हम उनको आपसे रूबरू कराते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे थिएटर की, स्टेज की और अभिनय की। रंगमंच शब्द हम सबने सुना है। रंगमंच दो शब्दों से बना है, रंग और मंच, यानी साज, सजा, संगीत आदि को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना, इसको ही रंगमंच का काम माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि वो मंच जहां पे नृत्य, नाटक, तमाशा आदि प्रस्तुत होते हैं, जिससे मनोरंजन की व्यवस्था होती है। आज हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे अभिनेता जो रंगमंच के साथ जुड़े हैं और रंगमंच के लय में अपने आप को उन्होंने डाला है। वो केवल एक अभिनेता ही नहीं है, वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और खास करके वो लेखक भी है। और जो भी व्यक्ति लेखक होता है या लिखता है तो वो हम सबके दिलों को समझते हैं, जानते हैं। आइए आज मैं आपको हमारे आज के मेहमान से मिलाता हूं। और आज के मेहमान है अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर संभव आजाद। संभव, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम इनसे मिलिए में।
3: सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इस प्रोग्राम के लिए बुलाया और मैं रेडियो वितस्ता के जो श्रोता हैं उन सभी का अपने दिल से धन्यवाद करता हूं।
2: संभव, हमारे श्रोता सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में एक छोटा सा विवरण दें कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है।
3: जी सर, कुरुक्षेत्र के एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा, ज्यादातर जो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने सुना ही होगा, मैं वहां का रहने वाला हूँ। वहीं पे मेरी पैदाइश, वहीं पे मेरी पढ़ाई और लगभग सब कुछ मेरा वहीं पे हुआ है। हालांकि कॉलेज मेरा अम्बाला कैंट में हुआ है। मेरी जर्नी है वो एक्चुअली शाहबाद से ही शुरू हुई थी।
2: आपने कहा कि आपकी जिंदगी की शुरुआत शाहबाद से हुई और शाहबाद होते होते आपके पास दो ऑप्शन थे, कुरुक्षेत्र भी और साथ में अम्बाला भी। आपने कहा कि आपकी जो कॉलेज है वो अम्बाला में हुआ है, तो क्या ये हम मान के चलें कि अम्बाला आपकी जिंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है?
3: बिल्कुल सर, क्योंकि जब मैंने स्कूल पास आउट किया तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कॉलेज कहाँ करूँ, शाहबाद में, कुरुक्षेत्र में या अम्बाला में। तब मैंने सर्च किया कुछ मेरे फ्रेंड्स से, उन्होंने बताया कि आप अम्बाला जाओ, अम्बाला में कॉलेज अच्छे हैं, माहौल अच्छा है। तब मैं यहाँ के GMN कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ से मेरा जो कॉलेज है वो शुरू हुआ और यहाँ से मैं अम्बाला से कनेक्ट हुआ।
2: और आप अम्बाला से जब कनेक्ट हुई तो अब हम आज बात कर रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए में एक ऐसे अभिनेता से, ऐसे कलाकार से जो रंगमंच के साथ जुड़ा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे सुनने वाले भी ये जानना चाहेंगे कि आप रंगमंच के साथ कैसे जुड़े और क्या बचपन से ही रंगमंच के साथ जुड़ने का कुछ लगाव था?
3: देखिए बचपन से एक वो कहते ना वाइब, एक वाइब रहती थी कि हाँ कि मुझे अभिनय करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी। कारण वो माहौल नहीं था, मेरे आस पड़ोस में या मेरे पूरे खानदान में दूर तक कोई अभिनय का कोई नाता ही नहीं था। लेकिन दिल से एक आवाज़ आती थी कि मुझे अभिनय की तरफ जाना चाहिए। वो आवाज़ सुनते सुनते सुनते मैं स्कूल पास आउट हो गया, कॉलेज में आया। कॉलेज के टाइम में मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूरी कोशिश की कि नहीं अब मुझे वो करना है। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, अभिनय का जो काम है वो बड़ा मुश्किल काम है और इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। और मैं बहुत ही शर्मिला लड़का था। स्कूल के दिनों में अगर मुझे प्रेयर में, सुबह जो प्रेयर होती है ना, उसमें आगे खड़ा कर दिया जाता था तो मेरे पसीने छूट जाते थे कि मुझे आगे कर दिया गया है। या मुझसे कोई सवाल पूछ लेता था तब मैं तो बेहोश हो जाता था कि इसने मुझसे सवाल कैसे कर लिया भाई, अब मैं क्या जवाब दूं।
2: एक तरीके की शाइनेस थी।
3: हाँ, बहुत बहुत शर्मिला था मैं चार लोगों में कुछ बोल नहीं पाता था
2: जी।
3: तो ये स्कूल के दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे हम बड़े हुए, कॉलेज में आए, लोगों से मिलना जुलना हुआ, बाहर आना जाना हुआ, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना हुआ, तो वो शर्म कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे खत्म
2: होती गई।
3: हाँ, कम होती गई। तो एक दिन मुझे मेरे एक दोस्ती कह सकते हैं कि उसने मुझे बताया कि यहाँ पे एक ऑडिशन हो रहा है अम्बाला में ही, पंजाबी फिल्म का ऑडिशन है। अब मुझे पंजाबी नहीं आती थी,
2: ठीक है,
3: लेकिन मुझे शुरुआत करनी थी। मैं ये सोचकर गया उस ऑडिशन में कि मुझे फेल होना है, लेकिन मुझे ऑडिशन होते कैसे है इसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा,
2: वहाँ किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के वो सवाल करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही सीखने के मकसद से गया था कि मुझे ये नहीं था कि मुझे काम मिलेगा या मैं वहाँ पे ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाऊंगा। मैं चला गया, ऑडिशन दिया भी, उन्होंने मुझे डायलॉग्स दिए पंजाबी में, हालांकि वो हिंदी में लिखे हुए थे लेकिन लैंग्वेज थी पंजाबी। मैंने रट लिया जैसे हम आमतौर पर स्कूल कॉलेज में करते हैं, अपने क्वेश्चंस आंसर जो हम याद करते हैं रटते हैं। मैंने रट के उनको सुना दिया। तो जो वो ऑडिशन लेने वाले थे उनको मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना बहुत गजब का लगा। अच्छा। कि इस लड़के को पंजाबी ना आते हुए भी इसने सारे डायलॉग बोले,
2: ठीक है।
3: तो पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर अपनी फिल्म में ऑफर कर दिया।
2: ओके।
3: तो उसका शूट यहाँ पंजाब में हुआ था, एक गाँव में हुआ था। तो वो शूट किया, मेरे अंदर वो शूट करने के बाद, हालांकि वो मैं अभिनय उसमें वो फो नहीं कर पाया जो एक करना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा विश्वास आया कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ।
2: यानी कि कॉन्फिडेंस आपको वहीं से आया कि अगर मुझे कोई भी स्क्रिप्ट दिया जाए और उसको मैं तैयार करके उसको डिलीवर कर सकता हूँ।
3: बिल्कुल, वहां वो मेरा कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि वो आ गया था बस। हालांकि वो पूरा नहीं था
2: जी,
3: लेकिन मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी कि मैं हाँ अब मैं कर सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, लोगों से मिल सकता हूँ, ऑडिशन दे सकता हूँ।
2: जो वो एक बैरियर था वो टूट गया। हाँ। और अब आपको मन ने गवाही दी कि अब आप आगे जा सकते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल। उस फिल्म करने के बाद मैं दिल्ली निकल गया। दिल्ली मैंने कई जगह ऑडिशंस दिए, कई जगह मैं सेलेक्ट हुआ। सबसे बड़ी खास बात थी कि वहां पे मैं पंजाबी या दूसरी लैंग्वेज के नहीं देता था,
2: ठीक है,
3: मुझे हिंदी ही मेरी परफेक्ट है, तो मैं हिंदी में ही ऑडिशन दिया करता था जहाँ पे हिंदी प्रोजेक्ट बन रहा हो।
2: तो जब आपने अभिनय की ओर कदम रखा तो आपने फिल्म्स की तरफ गए, अभी आप रंगमंच की तरफ अभी तक आपका जो रास्ता है वो नहीं बना था।
3: नहीं, रंगमंच से मैं अभी रूबरू हुआ ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था
2: जी
3: थिएटर्स के बारे में
2: जी।
3: दिल्ली में ये सन 2012 की करीब की बात है, जब मैं स्कूल कॉलेज में था, तो वहां पे एक सीरियल मुझे मिला साधना चैनल का। उस सीरियल का नाम था साजन का आंगन। उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, एक नए लड़के को लीड कैरेक्टर दिया गया था और वो बेसिकली एक नेगेटिव कैरेक्टर था। वहां भी मैं खुश नहीं था कि आपको पता ही है जो नए लड़के होते हैं या जो अभिनय में जाना चाहते हैं वो हीरो बनना चाहते हैं
2: पहले ही विलन बना दिया
3: मुझे, पहले ही विलन बना दिया। तो दुखी मन से मैंने वो सीरियल का जो है शूट शुरू कर दिया। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उस सीरियल में लीड हीरो से ज्यादा मेरी चर्चाएं होने लगी थी।
2: बहुत अच्छी बात है।
3: लोग लाइव आकर मुझसे मिला करते थे सेट पर और कहते थे सर आपका अभिनय हमें बहुत अच्छा लगता है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तब मेरी जो वो ये मानसिकता थी ना, ये विलन हीरो या कोई भी करेक्टर ऐसा कोई बुरा नहीं होता,
2: वो विशाल होगी, वो बड़ी होगी।
3: बिल्कुल। तब मेरे दिमाग से वो चीज हट गई। अब मुझे कुछ भी मिले, चाहे वो विलन हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो या कैसा भी कैरेक्टर हो, मैं खुशी खुशी उसको निभाता हूँ।
2: ठीक है।
3: वो सीरियल चला, लेकिन उस सीरियल के बीच एक बहुत बड़ी घटना मेरे परिवार में हुई। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया। मैं दिल्ली में शूट कर रहा था, पापा चंडीगढ़ फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल थे।
2: आपको सब कुछ छोड़ के
3: मैं अकेला था।
2: ठीक।
3: मेरे परिवार में मैं अकेला हूँ, तीन बहनें हैं,
2: ठीक है,
3: कोई देखने वाला नहीं था। मुझे शूट छोड़कर बीच में ही मुझे
2: सारा ही काम छोड़ के, हाँ, पहले अपने परिवार के लिए आपको आना पड़ा, ठीक है।
3: मैं कम से कम 20 दिन अस्पताल में रहा, शूट नहीं कर पाया, और उस फिल्म के डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी वजह से उस सीरियल को ही क्विट कर दिया, वो सीरियल बंद हो गया।
2: मतलब वो उसका जो प्रोडक्शन था, हाँ, वो प्रोडक्शन आगे हो नहीं हो पाया
3: क्योंकि उसका जो कैरेक्टर, वो विलन कैरेक्टर था ना, हीरो से लीड हीरो से वो मेरे पे आ गया था,
2: ओके,
3: तो वो कंटिन्यू नहीं हो सका, मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते थे वो, तो उन्होंने उस सीरियल को ही डिसकंटिन्यू कर दिया। वहां से चलो भगवान की दया से पापा अच्छे हुए, स्वस्थ हो गए। फिर लगभग कुछ टाइम गुजरा, मुझे इतने इस जर्नी में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जर्नी में मुझे एक बीच बीच में जब मैं शूट करता था ना, तो मुझे एहसास होता था कि कहीं ना कहीं अभिनय में मेरी थोड़ी कमियां हैं, वो कमियों को मैं कैसे दूर करूं। कोई गाइड करने वाला नहीं था, वो सीरियल भी बंद हो गया था, मैं काफी दुखी था कि अच्छा चल पड़ा था मेरा एक,
2: ठीक है,
3: लेकिन उस घटना की वजह से वो सब बंद हो गया था, मैं बहुत दुखी था।
2: ये एक अभिनेता जो बनने वाला है उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल डगर है कि जब उसने जिंदगी में कुछ नया करने का सोचा और आगे की ओर वो चल दिए, और वो अभी काम पूरा होने से पहले ही वो काम अगर बंद हो जाए, या घर में हमें कोई ऐसी स्थिति हो जाए हमें वो छोड़ के आना पड़े, तो एक कलाकार के लिए बहुत ही मुश्किल रास्ता था। तो यहाँ दो चीजें हो सकते थे, या तो आपका जुनून उस काम में और ज्यादा बढ़ गया हो, या उससे आप अपने आप को अलग कर दिया हो। तो आपने किस तरीके से फिर, जब हालात नियंत्रण में हुए, हालात अच्छे हुए, फिर आपने किस तरीके से अभिनय के साथ अपने आप को फिर जोड़ा?
3: उसके बाद जब पापा मेरे ठीक हो गए, तब मैंने अपने करियर को फिर से दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश की। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं क्या करूं। फिर मैं निकला मुंबई, मुंबई गया घूमा, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, हर जगह से मुझे निराशा ही हाथ लगी। मैं वापस मुंबई छोड़कर वापस शाहबाद आ गया। फिर मेरे दिमाग में आई कि अभी मेरे पास वक्त है, अपने आप को मैं निखार सकता हूं। फिर किसी ने मुझे कहा कि आप थिएटर करो, थिएटर से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जो अभी आप में कम है। तब मैं आमतौर पे सब गूगल ही करते हैं, अब मैं सोच रहा था मैं थिएटर कहां करूं, मेरे शाहबाद में तो कोई भी थिएटर ग्रुप है ही नहीं,
2: ठीक,
3: मेरा कॉलेज हुआ है अंबाला में, अंबाला के जो कॉलेज था मेरा जीएमएन कॉलेज, वहां पे ऐसा कुछ थिएटर ग्रुप नहीं था। अब मेरे दिमाग में आया कि चलो सर्च करता हूँ, शायद गूगल पे कुछ मिल जाए। तो मैंने सर्च किया, मुझे कुरुक्षेत्र के कुछ थिएटर्स मिले, अंबाला के कुछ थिएटर्स मिले। तब अब मेरे अंदर ये था कि मैं जाऊं कहां, कुरुक्षेत्र जाऊं या अंबाला जाऊं, पता नहीं वो मेरे अंदर क्या एक वो कहते ना कि इंट्यूशन आती है, एक वो आई कि नहीं अंबाला ही सही रहेगा, क्योंकि आप अंबाला पिछले 3 साल से लगातार कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपको वहां के रास्ते पता है, आपको वहां का हिसाब किताब पता है, कैसे बस से आना है, कैसे बस से जाना है,
2: और दोस्त है, और हाँ, वो रास्ते जो है वो जाने पहचाने
3: हैं। फिर गूगल पे सर्च करते हुए मुझे 3-4 थिएटर्स के नाम आए। मुझे नहीं पता कि मेरी नजर व्यर्थ थिएटर ग्रुप पर कैसे पड़ी, मुझे लगा अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मुझे यहाँ बात करनी चाहिए,
2: ठीक है।
3: उस साइट को मैंने खोला, वहां पे कुछ नंबर थे, मैंने नंबर को नोट किया, फिर मैंने कॉल किया और तब आपसे बात हुई थी।
2: यहाँ मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि वेस्ट थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अंबाला में 2013 मई से कार्य करती है, और हमें इस चीज की बहुत खुशी है कि अंबाला के आसपास के जितने भी कलाकार हैं उनको मंच प्रदान किया वेस्ट थिएटर ग्रुप ने। और बहुत खुशी होती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है और वो आपसे ये कहते हैं कि हम थिएटर करना चाहते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, आई थिंक एक सिखाने वाले के लिए इससे और बड़ी बात कोई नहीं हो सकती थी। और मुझे वो दिन आज याद है जब संभव का कॉल आया और हमने अपने वर्कशॉप पे उनको बुलाया, और वर्कशॉप पे संभव जब आप आए, हम सबके लिए आप नए थे और हम आपके लिए नए थे, तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ जब आपने पहली बार एक थिएटर ग्रुप में कदम रखा?
3: मुझे आज भी अच्छे से याद है जब आपने मुझे बुलाया, जब आपने मुझे डेट दी कि आप आज आ सकते हो, हमसे मिल सकते हो। आई थिंक वो 9 अगस्त 2015 था आपका बर्थडे।
2: आपने तो राज ही खोल दिया।
3: और वो 9 अगस्त आने वाली है, हाँ, 4 दिन के बाद। और कितनी अच्छी बात है कि उसी दौरान मेरा आज इंटरव्यू भी हो रहा है जब मैं प्यार थिएटर ग्रुप से मिला था।
2: जी जी।
3: तो जब मैं आपके थिएटर में आया तब केक वगैरह आया, मैं कहा ये क्या, अभी आज कुछ शायद फंक्शन वगैरह कुछ होगा। तब मुझे पता चला कि आपका बर्थडे है। मैं कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि बर्थडे वाले दिन ही मेरा आपके साथ इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो वो मेरा पहला दिन था जब आपने मेरे कुछ टेस्ट लिए, मुझसे कुछ सवाल पूछे और उन टेस्ट में मैं खरा उतरा, और तब से मैं आज तक आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वेद थिएटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, रेडियो वेतस्ता के साथ जुड़ा हुआ हूँ और फ्यूचर में भी मैं जुड़ा रहूंगा।
2: हमें बहुत गर्व होता है संभव आप जैसे कलाकार जिनको वेद थिएटर ग्रुप ने मंच प्रदान किया और आप अपनी ओर से पूरा प्यार और स्नेह हमें देते हैं। मुझे लग रहा है कि हमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी भी कोशिश और हमारी भी इच्छा यही है कि जिसके अंदर एक हिडन टैलेंट है उस टैलेंट को हम लेके आए। और मैं ये कह सकता हूँ सभी श्रोताओं को कि ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट radiovitasta.com पर भी है कि संभव ने जो भी किरदार वेद थिएटर ग्रुप के साथ प्लेज में निभाए हैं, चाहे वो स्टेज प्लेज थे, चाहे वो फुल लेंथ प्लेज थे या वो नुक्कड़ नाटक थे, उनमें जितने भी किरदार संभव ने निभाए उनसे हम पूरी तरह से खुश भी हैं और पूरी तरह से गौरवान्वित भी हैं। जिनमें मैं यहाँ जरूर नाम लूंगा, हमने कई सारे प्लेज किए हैं पिछले 10 साल में और जिनमें से खास करके एक प्ले परिंदा था और परिंदा के साथ हमारा जो प्रयोग था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिसका शो हमने चंडीगढ़ में किया, अम्बाला में किया। उसके साथ हमने एक नाटक किया रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं पर आधारित काबुलीवाला, उसमें संभव ने अभिनय किया। एक प्ले हमने तोता और आईना किया, उसमें संभव ने अभिनय किया, एक मस्करे का रोल किया जो कि कश्मीरी फोक के ऊपर आधारित था पर वो प्ले हिंदी भाषा में था। तो हमारी कोशिश ये हमेशा रही कि वेद थिएटर ग्रुप हर तरीके से हर लेवल के प्लेज करके लोगों का मनोरंजन करें और लोगों के सामने एक हमेशा एक नई चीज लेके आए। संभव, सबसे पहले जब आप वेद थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े तो सबसे पहले किरदार आपको करने को क्या मिला?
3: जब मैं आपके थिएटर ग्रुप से जुड़ा तो आपने मुझे सबसे पहला जो करेक्टर ऑफर किया वो था काबुलीवाला में भोला का। जैसा कि मैं आपसे हमेशा शिकायत करता हूँ कि सर मुझे ये करेक्टर पसंद नहीं है, मुझे दूसरा करेक्टर दो, तब आप कहते नहीं संभव आप यही करेक्टर करोगे, इसी को करोगे। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। जब वो प्ले मैंने पहली बार किया तो यकीनन जो तालियां मेरे लिए बजी थी वो आज भी मुझे याद है। आज भी जब लोगों ने मुझे गले से लगाया था या आज भी जब बात होती है तो मेरे उसी करेक्टर भोला के बारे में ही बात होती है।
2: और हमने इस नाटक का शो शिमला में भी किया और हमने इस नाटक का शो अम्बाला में भी किया और वहां से आपकी रंगमंच की जो जिंदगी है वो शुरू हो गई। तो जब आप किसी भी किरदार को समझने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से आप उस किरदार में अपने ओर से जान डाल देते हैं?
3: सर सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, अपने करेक्टर के पूरे अंदर तक जाता हूँ कि उस करेक्टर की मांग क्या है, फिर उस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ और उसकी, जैसे कि हमारी वर्कशॉप चलती है 30 दिन की या 25 दिन की, दिल से मेहनत करता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके जीवंत कर सकूँ।
2: हम इस कार्यक्रम में ये बातचीत तो जारी रखेंगे और उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आया है कि हम रंगमंच से थोड़ा सा हटके संगीत की तरफ आए। मैं संभव आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप रंगमंच के अब अच्छे अभिनेता तो बने हैं, हर दिन हमें कुछ नया सीखना होता है। संपूर्ण कलाकार तो हम कभी भी नहीं होते, हम हर दिन ही सीखते हैं और हमें हर दिन ही सीखना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संगीत की लाई को क्या आप पकड़ पाए हैं आज तक?
3: मैंने जैसे पहले बोला था आप फंसाते बहुत और आपने मुझे फंसा ही दिया। संगीत की बात आती है तो देखो सर, संगीत तो हर कोई सुनता है। संगीत एक ऐसी चीज है, चाहे वो थिएटर लाइन से हो, चाहे फिल्म लाइन से हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, संगीत एक दवा है हर एक के लिए और हर कोई कोने में अकेले में या सबके सामने गुनगुनाना पसंद करता है।
2: जी, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए भी आज अच्छे से कुछ गुनगुनाएं और वही आपका पसंदीदा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि कौन सा गाना आप गुनगुनाएंगे?
3: वैसे तो सर पसंदीदा गाने तो बहुत हैं, लेकिन जब कोई सवाल पूछ लेता कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है तब दिमाग
2: काम नहीं करता।
3: लेकिन फिर भी मुझे अपने एक बचपन का जो फेवरेट सॉन्ग है वो अभी याद आ रहा है, जिसे मैं बहुत काफी सुनता था और गुनगुनाता हूँ।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। और आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमान है अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक संभव आजाद। आइए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। और संभव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी अभिनय के सफर की बात की, इस सफर में आपने कौन कौन से प्लेज किए और किन किन शहरों में आपने प्ले किए?
1: सर, प्ले की बात आती है तो परिंदा, काबुली वाला, तोता और आईना, और VTG के साथ ही शॉर्ट फिल्म्स जो मैंने किए।
0: जो आपने ये नाटक और ये जो रंगमंच में जो भी आपने काम किया, क्या आपने वे थिएटर ग्रुप के साथ ही किया या और भी कहीं अलग जगहों पर आपने, खास करके रंगमंच की बात करूंगा, तो क्या आपने कहीं और भी ये किया और किन किन जगहों पे आपने अभिनय किया और अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन किया?
1: सर, थिएटर की बात आती है तो मैंने VTG के अलावा किसी भी थिएटर ग्रुप के साथ आज तक काम नहीं किया है। मैं शुरू ही VTG से किया था और VTG से ही मैंने खत्म किया है सर। और बात आती है सर फिल्म सीरियल की, तो फिल्म सीरियल भी मैंने VTG के साथ ही किए हैं, इसके बाहर भी किए हैं, और एक TV सीरियल नेशनल चैनल के लिए, वो भी मुझे वेद थिएटर ग्रुप यानी कि सर आपकी वजह से ही मुझे मिला था। और इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं ये बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को। थिएटर लगभग मुझे 4-5 साल हो गए थे करते करते, तब मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा सा
0: आगे,
1: थोड़ा और आगे मुझे बढ़ना चाहिए। तब मैं मुंबई निकल गया सर। मुंबई निकलने के बाद मुझे वहां एहसास हुआ कि मुझे थोड़ा सा अभी और सीखना बाकी है। तब मैंने वहां पर एक फेमस इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मुंबई एक्टिंग इंस्टीट्यूट, उसे मैंने ज्वाइन किया। वहां से पास आउट होने के बाद आपका मुझे कॉल आया और आपने मुझे इस ऑडिशन के बारे में बताया जो कि DD नेशनल के लिए एक सीरियल था, नया कुरुक्षेत्र, जो कि अभी ऑन एयर होकर ऑफ एयर हो चुका है। उसका एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत, मतलब मुझे कि अपने लोकल दर्शकों से बहुत प्यार मिला, जिन्होंने जिसने भी वो कैरेक्टर देखा उसने मेरी काफी तारीफ की।
0: संभव, एक मकसद हमेशा एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन हो, थिएटर ग्रुप हो, उसका मकसद केवल और केवल यही होता है कि जो उसके टीम मेंबर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मिले। अगर अंबाला में एक सीरियल बन रहा था जो हमारे दोस्त बना रहे थे और जब हम चले गए, मेरा मकसद केवल ये था कि मुझे उस सीरियल में जगह काम करने की मिले या ना मिले, बट मेरी जो टीम है उस टीम के मैक्सिमम लोगों को काम मिलना चाहिए, तो हम इसी उद्देश्य से गए थे। हम अपना ऑडिशन देंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमें कोई किरदार मिले। मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें मैंने तो किरदार निभाया ही और साथ में मेरे टीम के यानी VTG टीम के 7 कलाकारों ने उसमें अभिनय किया और सबसे अच्छा करेक्टर और बड़ा करेक्टर संभव आपको उसमें मिला, जहां से आपको बहुत सारा प्यार भी मिला और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो जब ये TV सीरियल जब आपने किया, क्या उसके बाद आपका सोच का दायरा उससे और बड़ा हो गया?
1: जी बिल्कुल सर, वो सीरियल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे हाँ अब तो वो चीज मुझे मिली है जो मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में चाहता था। जैसा कि थिएटर के दौरान ही मैं स्क्रिप्ट्स भी लिखता था, आपको पता है मैंने कई शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें VTG के कलाकारों को लेकर ही मैं बनाता था, जिसमें आपने अभिनय किया, मेरे और साथी कलाकारों ने अभिनय किया। तो वो जो स्क्रिप्ट लिखने का जो सिलसिला ना, तब से लेकर आज तक जारी है। और बतौर उसके जब मैंने एक वेब सीरीज की YouTube के लिए जिसका नाम मृत्युजल 2 था, वो जब OTT पर रिलीज हुई तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था कि मेरे ही बनाई हुई एक OTT पर रिलीज हो रही है।
0: जिंदगी में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब तरक्की मिलती है और एक ऑप्शन मिलता है, तो जहां पर लाखों लोग उस कंटेंट को देखते हैं तो ऑब्वियसली वो एक खुशी का समय होता है। जब आप OTT तक पहुंचे तो OTT के बाद आपने लेखन पर ज्यादा ध्यान दिया या अभिनय पे ध्यान दिया? आज वर्तमान में आप मुंबई में है, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी श्रोताओं को आप ये भी बताएं कि वर्तमान में आप क्या कार्य करते हैं, वर्तमान में आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिनके माध्यम से हम आपको आने वाले दिनों में आपको हम देख सके।
1: सर, जैसा कि आपका सवाल है कि मेरा फोकस अभी किस चीज पर है, लेखन पर है, अभिनय पर है या किसी और काम पर है? देखिए सर, मैंने तीनों को बैलेंस किया हुआ है। मैं अभिनय पर भी फोकस हूँ, लेखन पर भी फोकस हूँ, और साथ साथ कुछ OTT प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और इसी दौरान सर मैंने एक प्रोजेक्ट लिखा है, टिम्फ्यू। अभी आप सोच रहे होंगे सर, ये टिम्फ्यू क्या है?
0: टिम्फ्यू स्पेलिंग
1: TIMFEO, तो ये वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा सर
0: जी, जी.
1: क्योंकि ये वर्ड एक शॉर्ट फॉर्म है,
0: एब्रिविएशन है
1: जी. इसका जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन. और इसके जो होस्ट हैं वो है बॉलीवुड के एक्टर हास्य कलाकार श्री राजपाल यादव जी. और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एज ए राइटर, और बहुत जल्द ये नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है. एक बहुत बड़ा चांस है मेरे लिए.
0: ये इसका जो कंटेंट है ये आपने लिखा है
1: जी,
0: यानी कि इस प्रोजेक्ट के लेखक संभव आजाद
1: जी
0: है.
1: इसका पूरा जो प्रोजेक्ट जो लिखा है वो मैंने लिखा है. और इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा जो इसके प्रोजेक्ट हेड है जिनका नाम है सैयद अब्बास. आप सर यकीन नहीं करेंगे उनकी एनर्जी देख कर मैं इतना चकित हुआ. इस एज में उनकी इतनी एनर्जी शायद आज के युवाओं में नहीं होगी. काम करने का जुनून, माई गॉड. मैंने उनसे इतना सीखा कि वो एनर्जी, अब मैं चाहता हूं कि वो एनर्जी मेरे अंदर भी आ जाए. उन्हीं के थ्रू मुझे ये प्रोजेक्ट मिला. मैं सैयद अब्बास जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपने टीम में रखा हुआ है, इतने बड़े प्रोजेक्ट का मुझे एक हिस्सा बनाया.
0: देखिए, यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा वेब थिएटर ग्रुप के लिए भी एक गौरवान्वित पल है ये कि जो लोग अभिनय करके वीटीजी से आगे की ओर बढ़े हैं और आज एक राष्ट्रीय हमारे एक कलाकार श्री राजपाल यादव जी के साथ काम कर रहे हैं. और लेखन में खास करके, क्योंकि लेखन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और संवेदनशील भी होता है. तो मैं तो ये कहूंगा कि मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम से और रेडियो वितसा टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप शाहबाद को, अम्बाला को, हमें सबको गौरवान्वित करेंगे जब आपका ये प्रोजेक्ट स्क्रीन पे आएगा और लोग आपके कंटेंट को देखेंगे और वाहवाही करेंगे. तो मुझे लग रहा है कि उससे सबसे ज्यादा खुशी हम सबको होगी. तो आने वाले दिनों में क्या आप मुंबई में ही अपने आप को सेटल करेंगे या मुंबई में ही काम करेंगे, या अगर अपने के लिए आपको किसी और जगह पे काम मिलता है तो क्या आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे?
1: देखिए सर, फिलहाल फोकस मेरा मुंबई में ही है. इसके अलावा अगर मुझे कहीं बाहर काम मिलता है तो बाहर काम मैं जरूर करना चाहूंगा टाइम निकाल कर. जैसे सर मेरा जो वर्क है वो मुंबई में ही अच्छा खासा चल रहा है. तो आने वाले दिनों में कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं लिख रहा हूं या आगे लिखने वाला हूं, जिन पर अभी काम चल रहा है सर.
0: हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं और हम संभव जी से एक और प्रश्न करना चाहेंगे. संभव एक युवा है और युवा की सोच रखते हैं और हमारे देश के लिए युवा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ होता है. मैं संभव आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो लोग अभिनय करना चाहते हैं, अभिनय सीखना चाहते हैं और उसके बाद मुंबई जाके वो फिल्म इंडस्ट्री में या मुंबई जाके अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको कितना तैयार होके घर से निकल के वहां जाना चाहिए? क्योंकि शायद कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं फिर शायद पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं होता है. तो मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से आज के युवाओं को अपनी ओर से एक मैसेज दें.
1: देखिए सर, आज के युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कहीं भी काम करें, चाहे वो अपने लोकल काम करें, चाहे वो मुंबई जाकर काम करना चाहें, सबसे पहले अपनी पूरी तैयारी रखें, अच्छे से सीखें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत ही है वो चाबी है जो आपको सक्सेस तक लेकर जा सकती है. जिसके लिए अगर आप अभिनय में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोकल थिएटर करें. अम्बाला में है तो वीटीजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जहां से आपको नए कलाकारों को एक, मतलब कि क्या कहते हैं, एक जो बीज होता है ना, बीज से एक पौधा बनाया जाता है, वीटीजी वो काम करता है. ज्यादातर नए कलाकारों को वीटीजी ने तैयार किया है और आज इतने अच्छे लेवल पर मुंबई में काम कर रहे हैं. कुछ मेरे साथी हैं जो मेरे साथ थे, आज वो मेरे से आगे काम कर रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है.
0: यानी कि जो आपका मैसेज युवाओं के लिए है कि वो पहले अपने आप को अच्छे से परखें, रंगमंच करें और तैयारी के बाद ही वो अगला स्टेप मुंबई के लिए लें, ताकि उनको वहां पर काम करने में, काम मिलने में कोई दिक्कत ना हो.
1: बिल्कुल सर.
0: संभव, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. आप हमेशा वीटीजी के लिए, वीटीजी की प्रमोशन के लिए हमेशा आगे आते हैं. आप हमें मान सम्मान देते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हमेशा है. आपने वीटीजी की टीम के लिए भी हमेशा काम किया है और मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनी पूरी समस्त रेडियो वितस्ता टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप इतनी तरक्की करें जिस तरक्की में हम भी जाने जाएं, पहचाने जाएं. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज स्टूडियो में आने के लिए. इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम का करता हूं समापन. और

0: फिर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मैं वो गाने की एक लाइन गुनगुनाना चाहूंगा, तो वो लाइन है मेरे

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम
1: नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर।

0: तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: ए बाबू ले लो ना नारियल।

मन खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: साथ चलन की तैयारी कर ले,
1: कर ले।
0: अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताज महल एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
4: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
3: रेडियो वितस्ता
4: असले पौन पटाके
3: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। मक्का की बुआई का समय खत्म हो चुका, अब बेबी कॉर्न के लिए बिजाई कर सकते हैं किसान। फॉल आर्मी वर्म कीट नुकसानदायक, बुआई के बाद प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। दाने वाली मक्का की बुआई का उपयुक्त समय अब समाप्त हो चुका है, ऐसे में किसान वर्तमान मौसम में केवल बेबी कॉर्न की खेती करें। बेबी कॉर्न उत्पादन के लिए MH4 और पोसा MH4 मेल स्टेराइल किस्मों को उपयुक्त माना गया है। विशेषज्ञों के अनुसार बेबी कॉर्न की बुआई के बाद धान की पराली 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खेत में समान रूप से बिछानी चाहिए। पराली मलच के रूप में कार्य करती है, जिससे खरपतवारों का उगाव कम होता है और फसल में उनकी समस्या नियंत्रित रहती है। मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म सबसे नुकसानदायक कीटों में से एक है। इसकी समय पर पहचान के लिए बुवाई के तुरंत बाद प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। यदि पौधों की पत्तियों पर बड़े व अनियमित छेद दिखाई दे या गोब वर्ल में कीट का प्रकोप नजर आए तो तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए। खेत की तैयारी, खेत की 4 से 5 जुताई करके 2 बार सुहागा लगाएं, ताकि खरपतवारों व ढेलों रहित अच्छी बीज शैया तैयार हो सके। बीज की मात्रा बेबी कॉर्न के लिए औसतन 12 किलोग्राम प्रति बीज एकड़ डालने से वांछित पौधों की संख्या प्राप्त की जा सकती है। बीज उपचार, रोगों व कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए बीज को पहले फफूंदनाशक और कीटनाशी से उपचारित करना चाहिए। दीमक व प्ररोह मक्खी की रोकथाम के लिए एमिडाक्लोप्रिड 70.8 SL तथा 7 मिली प्रति किलोग्राम व रोगों से बचाने के लिए थीरम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीजोपचार के समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने, मुंह में मास्क लगाएं और हाथ में किसी प्रकार की चोट या खरोंच ना हो। लाइनों की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधों की 15 सेंटीमीटर रखें। पूर्व पश्चिम दिशा में मेड़े बनाकर बीज मेड़ों पर दक्षिण दिशा में 4 से 6 सेंटीमीटर गहरा बोएं। लाइनों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बिजाई यदि न्यूमैटिक प्लांटर द्वारा चौड़ा खुर विधि का उपयोग करके की जाए तो मक्का का जमाव भी अधिक होता है व पानी का भी 30 से 35% बचाव होता है। खाद व उर्वरक, बेबी कॉर्न में ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद व रासायनिक उर्वरकों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय अच्छी गली व सड़ी गोबर की खाद 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। बिजाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसी आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। सामान्य दशाओं में बिजाई के समय पूरी फास्फोरस व पोटाश 52 किलोग्राम DAP व 40 किलोग्राम MOP का 1/3 नाइट्रोजन 45 किलोग्राम यूरिया डालें। सिंचाई, खेत में नमी बनाए रखने के लिए 6 से 8 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। दाने की दुधिया अवस्था व दाना सख्त होने की अवस्था में सिंचाई सुनिश्चित करें, वरना पैदावार में 15 से 20% की हानि हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा बरसात या तूफान की चेतावनी होने पर सिंचाई रोक दें। खरपतवार नियंत्रण। बेबी कॉर्न में सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए 600 ग्राम एट्राजिन 50 WP को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1 से 2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहले छिड़काव करें। टेम्बोट्रियन 42 SC 115 मिली प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 20 से 25 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। गर्मी में पौधों में कम खाद डालें, मल्चिंग विधि अपनाएं। पेड़ पौधों और हरी सब्जियों की पौधों की जड़ों को ठंडा रखना जरूरी। जून और जुलाई के महीनों में चलती गर्म हवाएं लू न सिर्फ इंसानों को बल्कि पेड़ पौधों और हरी सब्जियों को भी बुरी तरह झुलसा देती है। कमल सैनी BHO करनाल ने बताया कि इस मौसम में अक्सर देखा जाता है कि बागों में आम, नींबू और अमरूद के छोटे फल पकने से पहले ही काले होकर गिरने लगते हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में बाग सब्जियों की खेती या घर के बगिया किचन गार्डन को तपती गर्मी और लू से सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक और स्मार्ट उपाय करने चाहिए। गर्मी में पौधों में कम खाद डालनी चाहिए और किसान मल्चिंग विधि अपनाएं। मिट्टी को ढकना पौधों के लिए सुरक्षा कवच। इस मौसम में सीधी धूप पड़ने से मिट्टी की नमी बहुत खत्म हो जाती है। इससे बचने के लिए पौधों सब्जियों के मुख्य तने के चारों ओर सूखी घास, पुआल, गन्ने की पत्तियां या सूखे पत्तों की 3 से 4 इंच मोटी परत बिछा दें। इसे मल्चिंग कहते हैं। यह परत सूर्य की सीधी किरणों को मिट्टी तक नहीं पहुंचने देती, जिससे जमीन की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और पानी की खपत भी आधी हो जाती है। सब्जियों की जड़ों को ठंडा रखने में यह विधि सबसे कारगर है। फल सब्जियां झड़ने की समस्या खत्म होगी। नींबू, आम व बेल वाली सब्जियों में इस समय फल फूल झड़ने की समस्या आती है। इसका प्रभाव फसलों के कुल उत्पादन पर पड़ता है। तल केचुआ खाद पौधों के लिए सुरक्षित और हल्का टॉनिक है। स्यूडोमोनास और ट्राइकोड्रामा को पानी में मिलाकर जड़ों के पास देने से इस मौसम में लगने वाले फफूंद से बचाव होता है। बोरोन और जिंक को फलों को फटने और झड़ने से रोकने के लिए बोरोन का बहुत हल्का छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में शाम के समय करना चाहिए। हरे पर्दे की ओट और दोपहर की छांव। अपने घर की छत या बालकनी में गमलों में बागवानी की है या छोटी क्यारियों में सब्जियां उगाई हैं, तो इस मौसम में 75% वाला हरा पर्दा जरूर लगाएं। ये नेट तेज धूप को छानकर पौधों तक पहुंचाती रहती है। इससे पौधों को भोजन बनाने के लिए जरूरी रोशनी भी मिल जाती है। रस चूसने वाले बारीक कीट के बचाव के लिए नीम के तेल का पानी में घोल बनाकर साथ में हल्का सा लिक्विड सोप मिलाकर हर 10 से 15 दिनों में शाम के समय पौधों पर छिड़काव करें। जून में खेत समतल कराने का सही समय। लेजर लैंड लेवरर से बचता है पानी, पड़ती है पैदावार। सिंचाई के पानी की 25 से 30% बचत, पैदावार में 10 से 20% वृद्धि होगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की कटाई के बाद जून में लेजर लैंड लेवलर मशीनों से खेतों को समतल कराया जाए तो खरीफ सीजन में धान, मक्का, कपास फसलों की बेहतर पैदावार मिल सकती है। लेजर लैंड लेवलर GPS लेजर तकनीक की मदद से खेत की ऊंची नीची भूमि को मिलीमीटर स्तर तक बराबर करता है। इससे सिंचाई का पानी पूरे खेत में समान रूप से पहुंचता है व कहीं भी जल भराव या सूखे की स्थिति नहीं बनती। समतल खेतों में 20 से 30 प्रतिशत तक सिंचाई जल की बचत हो सकती है और उर्वरकों का उपयोग भी अधिक प्रभावी ढंग से होता है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बिरवाल ने बताया कि गेहूं कटने के बाद खेत अपेक्षाकृत खाली रहते हैं, इसलिए जून में लेजर लेवलिंग कराने से मिट्टी को बैठने का समय मिल जाता है और खरीफ बुवाई के समय खेत पूरी तरह तैयार रहता है। इससे बीज अंकुरण एक समान होता है तथा फसल की वृद्धि भी संतुलित रहती है। लेजर लेंस से लेवलर के फायदे। इससे हर मौसम में सिंचाई के पानी की 25 से 30 प्रतिशत बचत होती है। किसानों की फसल की पैदावार में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक एकड़ खेत को समतल करने में केवल 2 से 4 घंटे लगते हैं। सरकार देती है सब्सिडी। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत लेजर लैंड लेवलर पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% व लघु सीमांत महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 50% तक सब्सिडी मिलती है। पात्र किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056641310। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
3: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: घी दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

تُہۍ چھُو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितसत्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक्स है, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा, उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रक्त इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेड ब्लड डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात को रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़ी दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनुरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है, उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें, 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे अ वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोमनिया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अटैक का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो।

सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन्स को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2, प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
2: फिल्मी गीतों पर आधारित पेश है प्रोग्राम सरगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपकी कसम फिल्म के गीत के साथ, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

लीजिए अब सुनिए मन की आंखें फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चलते चलते से। गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाना जो वापस फिल्म का है। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं मजरूं सुल्तानपुरी ने।

सभी श्रोताओं के लिए पेश है फिल्म शर्मिली का गाना, जिसे लिखा है नीरज ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने और स्वर दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

इस कार्यक्रम का अगला गीत है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गीत की, जो फिल्म त्रिशूल का है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत दिया है खयाम ने।

अब पेश है फिल्म ताजमहल का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत रोशन का है।

इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत। संगीतकार आरडी बर्मन, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं उसका फीडबैक हमें जरूर रेडियो विदस्ता के इस नंबर पर दीजिए। नंबर है 7056413010। सरगम कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

रात की मुसाफिर फिरते हैं डेरे डेरे बस्ती बस्ती, तलाशते हैं खोई हुई पहचान। ये रात भी मेहरबान होती जरूर अगर कोई पुकारता, अपनी सोबत में रख कर ये जानने की कोशिश करता कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है।

बिखरती हैं तस्वीरें और भीड़ में गुम हो जाते हैं वो चेहरे जिनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए हम रहते हैं बेताब, और यह बेताबी दिल में छुपती है। धीरे धीरे करवटों के सायों में जिंदगी गुजर जाती है यूं ही बेवजह, और ख्वाब आंखों की पुतलियों में बस जाते हैं यूं ही बेवजह।

यहां अक्सर परछाइयों से रिश्ते बने हैं और सायों से लिपटते रहे हैं। उदासी में सोए हैं, उनकी यादों में खोए हैं। जब जब मौसम बदलते रहे हैं, जब जब मौसम बदलते रहे हैं, तुमको अपने तस्वीर में उतारते रहे हैं। कुछ तुम कहते गए और कुछ हम सुनते गए।

सफर है मुरादों का और अपने सजदों में खुदा को ढूंढते रहे, पर ना खुदा ही मिला और ना ही हम सफर। आरज़ूओं में शिद्दत तो थी जरूर, पर इबादत बेअसर साबित हुई। अब अपने खत्मे सफर में कुछ ऐसी देर नहीं, जो देर है तो फकत थक के बैठ जाने की।

खतरा है, आई न लाओ, हम अपनी आखिरी तस्वीर उतारेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे आपसे रुख

आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के प्रसारण हम अभी यहां पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि आपकी सेवा में हम सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। हम बात करते हैं वो जो रखती हो आपसे सरोकार। हम

सफर को यहीं पर विराम देने का। मैं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भरत सोपोरी, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास था। आज 14 जून है, यानी विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आज के दिन का मुख्य उद्देश्य हम सभी को स्वैच्छिक और सुरक्षित रक्तदान के प्रति जागरूक करना है, ताकि किसी भी जरूरतमंद को समय पर जीवन रक्षक रक्त मिले और उसकी जान बचाई जा सके। जैसे कि कहा जाता है, रक्तदान है महादान। हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी के बुझते हुए घर की चिराग को दोबारा रोशन कर सकता है। रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, इसे केवल एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है। इसलिए जब भी मौका मिले, आगे आए और रक्तदान जरूर करें। रेडियो वितस्तक के साथ भी जुड़े हैं बहुत सारे लोग जो रक्त दाता है, जिनको हमने स्टूडियो में आमंत्रण भी दिया है और उनसे बातचीत भी की है। हम उनको साधुवाद देते हैं जो लोगों के घरों को चिराग दोबारा रोशन कर रहे हैं। कौन कौन कर सकता है रक्तदान? अगर आप भी इस महादान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। आपकी उम्र 18 साल से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपका वजन कम से कम 45 किलोग्राम या उससे अधिक हो। आपका हीमोग्लोबिन यानी एचबी स्तर न्यूनतम 12.5% होना चाहिए। आप किसी गंभीर बीमारी जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस या कैंसर से पीड़ित ना हो। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का ये संदेश आपके दिलों तक पहुंचा होगा। चलते चलते वितस्ता की ओर से ये खूबसूरत पंक्तियां आप सभी के नाम। पंक्तियां यूं है, दिलों में प्यार और लबों पर मुस्कान रखता है। दिलों पर प्यार और लबों पर मुस्कान रखता है, हर धड़कन में जो अपनों का अरमान रखता है। जुड़े रहिए रेडियो वितस्ता के सुरों के साथ हमेशा। जुड़े रहिए रेडियो वितस्ता के सुरों के साथ हमेशा, क्योंकि यह स्टेशन हर दिल का ख्याल रखता है। क्योंकि यह स्टेशन हर दिल का ख्याल रखता है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां आप सभी के नाम। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। कल 15 जून 2026 सोमवार, हफ्ते की शुरुआत के दिन हम सभा की शुरुआत करेंगे 5:58 पर वंदे मातरम से। लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह और साथ में पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत। 7:05 पर सोमवार को आप सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। कल होगा एपिसोड 10। हमारे साथ होंगे डॉक्टर सतपाल गुप्ता, जो क्षार सूत्र विशेषज्ञ है। जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं के लिए। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय। कल एपिसोड 12 होगा, 2 पहिए, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 कार्यक्रम मिले जुले गीत का कार्यक्रम होगा, इसका शीर्षक होगा आस पे जीना। 10:00 होगा कार्यक्रम परिचर्चा एपिसोड 3, विशाल शर्मा डार्ले होंगे हमारे साथ। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शम गजल और 7:00 कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8 होगा, पेश करेंगे आरजे किरनी। 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है बस एक लम्हा तुम्हारी याद का। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम भी पसंद आएंगे। अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब घड़ी की सुइयां गवाही दे रही है कि हम आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं थाम लें। कल सुबह फिर एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नई आवाजों और नए बेहतरीन तरंगों के साथ आपसे होगी मुलाकात। इसी आपके अपने स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
सुबह 6 बजे से

रात के 9 बजे तक सुनना ना भूलें। अब अपने दोस्त भरत सोपोरी को दीजिए इजाजत। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।